0: 106.2 The Beat of Bollywood. Big 106.2 wishes all its listeners a very happy Indian Independence Day.
1: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.
0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 The Beat of Bollywood.

0: The Big Weekender. Hold tight for 4 hours of the biggest Bollywood hits.
1: All weekend long.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: A circuit. अपने कार के एसी की वाट लग गई। एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा? बताना।
3: टेंशन नहीं लेने का भाई। अलरास है ना?
2: अलरास बोले तो?
3: बोले तो। मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन। हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
2: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
4: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। हार नमान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
0: बिग 106.2। Bollywood.

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।

बिग 106.2 की तरफ से आपको इंडियन इंडिपेंडेंस डे की बधाई. आजादी का जश्न हमारे साथ मनाएं. सुनते रहे बिग 106.2, जहां भारत दिलों में बसता है.

बिग 106.2 की तरफ से आपको इंडियन इंडिपेंडेंस डे की बधाई. आजादी का जश्न हमारे साथ मनाएं. सुनते रहे बिग 106.2, जहां भारत दिलों में बसता है.

0: Big 106.2 wishes all its listeners a very happy Indian Independence Day.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन, आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
0: बिग 106.2 की तरफ से आपको इंडियन इंडिपेंडेंस डे की बधाई। आजादी का जश्न हमारे साथ मनाएं। सुनते रहे बिग 106.2, जहां भारत दिलों में बसता है।

0: बिग 106.2 की तरफ से आपको इंडियन इंडिपेंडेंस डे की बधाई. आजादी का जश्न हमारे साथ मनाएं. सुनते रहे बिग 106.2, जहां भारत दिलों में बसता है.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Big Water 6.2.

मिलेनियल वीकेंडर, मैं हूँ शिरिन, बिग 106.2 पर आपके साथ एक और बार शनिवार की सुबह को अमेजिंग बनाने के लिए मैं आपके साथ आई हूँ. वी आर गोइंग टू लिसन टू लॉट ऑफ वंडरफुल ब्यूटीफुल मिलेनियल टाइम्स के सॉन्ग. साथ ही में मैं आपको कुछ ऐसी बॉलीवुड मूवीज के बारे में बताऊंगी. आज साहस मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि ये बॉलीवुड की मोस्ट ट्रोल्ड मूवीज हैं. मतलब आज भी इन ट्रोल्स को यूज़ किए जाते हैं, आज भी लोग इन मूवीज़ को अगर देखते हैं तो इसीलिए, क्योंकि ये ट्रोल वैल्यू पे सर्वाइव कर रही हैं. तो ऐसी मूवीज़ में से सबसे पहले मैं जिस मूवी का नाम लेना चाहूँगी वो है जानी दुश्मन. जानी दुश्मन मूवी मतलब आज भी सबको पता है ये मूवी अक्षय कुमार ने इसलिए की क्योंकि उनको अपना घर बनाना था और उनको जो है उसमें से पैसे ज़्यादा मिलने वाले थे. वो मर के ज़िंदा भी हो गए थे इस मूवी में. और इसमें जो है सोनू निगम ने अपना, पता नहीं सोनू निगम को और कोई मूवी, मतलब और किसी मूवी में थोड़ा कर लेते यार. इसमें जो उन्होंने एक्टिंग की है, सबको लगा कि सोनू को एक्टिंग नहीं करनी चाहिए. बट यू नो, आई ऑलवेज फेल्ट सोनू निगम कुड हैव बीन अ ग्रेट एक्टर, प्रोवाइडेड ही डज ग्रेट मिमिक्री ऑफ सो मेनी आर्टिस्ट. बट एनीवेज, कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए नहीं बनी. अदर देन दैट, इतने सारे लंबा चौड़े स्टारकास्ट के साथ भी इस मूवी का कुछ हुआ नहीं, लेकिन ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा इस मूवी को मिली. इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को ये मूवी जो है देखनी चाहिए जस्ट फॉर द ट्रोल वैल्यू. तो इफ़ यू एग्री, लेट मी नो ऑन द इंस्टाग्राम ऑफ बिग, विच इज़ 106.2 बिग. एंड ऑन दैट नोट, लेट्स गो एंड लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग.

Big Millennial Weekender, this is me Shirin on Big 106.2. The most trolled Bollywood movies ke bare mein agar baat karein, to Jaani Dushman ke baad agar kisi movie ka naam mere dimag mein aata hai, wo hai Himmat Wala. Sabse pehle to mujhe ye samajh mein nahi aaya ki Himmat Wala jo pehli bani thi, that was long back. It was like Jitendra and Sri Devi ji. Lekin usko remake banane layak wo thi kya movie? Really doubtful. In fact, even jab ye movie ka remake बना रहे हैं साजिद खान, इस बारे में जब इंफॉर्मेशन श्रीदेवी तक पहुंची और श्रीदेवी से पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक, यू नो, आपकी मूवी को जो है रीमेक बनाया जा रहा है, तो हर आंसर वाज लाइक व्हाई इज दैट बीइंग रीमेक. मतलब इतनी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं श्रीदेवी की और जितेंद्रा की कि हिम्मत वाला को क्यों. और ये जो है मुँह के बल गिरे साजिद खान जी, क्योंकि जब रीमेक बनाई उस मूवी को जो है ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली. अजय देवगन एंड तमन्ना वर स्टारिंग इन द मूवी एंड इट वाज नॉट रियली दैट अप टू द मार्क, बट ऑफ कोर्स वही नैनो में सपना एंड ऑल द सॉन्ग्स वर रियली लाइक यू नो टॉक्ड अबाउट और श्रेया घोषाल ने गाया. ऑफ कोर्स द गाना वाज रियली नाइस बट द मूवी, व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो. ट्रोल वैल्यू के लिए ये मूवी जो है आप लोग देख सकते हो एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक. ऑन दैट नोट लेट्स गो एंड लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग.

Kinder, this is me, Shirin, on Big 106.2. और आज की शनिवार हम बात कर रहे हैं अबाउट द मोस्ट ट्रोल्ड बॉलीवुड मूवीज. तो इसमें जो है एक मूवी का नाम अगर मैं नहीं लूंगी तो फिर ये इनकम्प्लीट लगेगा, विच इज RGV की आग. वंस अगेन, ये क्यों बनाई गई मूवी समझ में नहीं आता. एक तो पहले तो ये रीमेक है, जिनको नहीं पता ये मैं बता देती हूँ. शोले, जो कि क्लासिक मूवीज में से एक मानी जाती है. क्लासिक मतलब ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज अ क्लासिक इन दैट मूवी. द मूवी इज लाइक अमेजिंग. ऐसी मूवी को बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए, यू नो, उस कैटेगरी में पड़ती है. उसको जो इन्होंने फिर से जाके बनाई राम गोपाल वर्मा में वर्मा ने, और उसका नाम रखा RGV की आग. और उसमें जो है ऑल दो कैरेक्टर्स के लिए जो एक्टर्स को यूज़ किया गया, अमिताभ बच्चन है, सबको, सब लोग हैं, लेकिन जब मूवी बन के आई तो सबको लगा कि क्यों छेड़ा इस मूवी को, क्यों बनाई है इस मूवी को. और ये बन गया हमारे ट्रोल लिस्ट का, ट्रोलर्स का सबसे फेवरेट मूवी. तो ट्रोल वैल्यू के लिए अगर आपको देखना है तो RGV की आग देखिए, वरना एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए देखना है तो शोले ही देखिए. तो ऑन दैट नोट, लेट्स गो एंड लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग.

बिग 106.2 की तरफ से आपको इंडियन इंडिपेंडेंस डे की बधाई. आजादी का जश्न हमारे साथ मनाएं. सुनते रहे बिग 106.2, जहां भारत दिलों में बसता है.

बिग मिलेनियल वीकेंडर, दिस इज मी शिरिन ऑन बिग 106.2। तो बहुत सारी मूवीज हैं जिनको ट्रोल किया जाता है, लेकिन उसमें से कुछ मूवीज के नाम आज मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो अगला जो मेरे लिस्ट में है वो है लव स्टोरी 2050। एक तो 2050 में जो इनका विजुअलाइजेशन था कि 2050 में दुनिया कैसे होने वाली है, वो बहुत ही फनी सा था, बहुत ही फनी, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लग रहा था कि हम कार्टून देख रहे हैं, राइट। तो उस मूवी में जो है सबसे पहले तो हरमान बवेजा का डेब्यू था, एंड नोबडी थॉट कि दिस कुड बी अ डेब्यू के लायक वाला मूवी। एंड उसमें प्रियंका चोपड़ा जैसी बड़ी स्टार को लेके मूवी ऐसा बना देना, इट वॉज वाइडली रोस्टेड फॉर इट्स बिजार अटेम्प्ट एट द फ्यूचरिस्टिक साईफाई। इनकी जो शाइनी शाइनी सिल्वर सिल्वर आउटफिट्स वगैरह थे, बहुत सारे जारिंग एनिमेशंस थे, सभी चीज़ों के लिए इनको ट्रोल किया गया। लेकिन आई मस्ट से कि कुछ सॉन्ग्स जो हैं वर फाइन, वर नाइस, बट यस दे वर डेफिनेटली यू नो दिस मूवी वॉज डेफिनेटली वॉच्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रोल वैल्यू। तो ट्रोल वैल्यू के लिए अपनी वीकेंड को बर्बाद करना है तो देखिएगा जरूर लव स्टोरी 2050। ऑन दैट नोट लेट्स गो एंड लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग।

मिलेनियल वीकेंडर, दिस इज मी शिरिन ऑन बिग 106.2। तो ट्रोल्ड मूवीज जो हैं वो भी कभी कभी मज़ेदार होती हैं देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी अगली लिस्ट में जो अगली मूवी है वो है 30 मार खान। 30 मार खान मुझे लगता है कि इसलिए ट्रोल की गई थी क्योंकि बहुत ही ओवर द टॉप एक्टिंग, ओवर द टॉप कॉमेडी सीन्स, और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी कॉमेडी जो कि सबके पल्ले नहीं पड़ता, ऐसी चीज़ों की वजह से इसको जो है बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। लेकिन सच्ची कहूँ तो मैं जब इस मूवी को देखती हूँ ना यार, मेरे को ऐसा लगता है यार कहीं मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मैंने इस मूवी को एंजॉय किया एंड मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी एंजॉय किया। सो मे बी ये एक ऐसी मूवी है जो सबके पल्ले नहीं पड़ती, बट कुछ कुछ फन जो कुछ कुछ उसमें फ़नी सीन्स वगैरह हैं वो वाकई में मेरे को फ़नी लगी। एंड ऑफ कोर्स हु कैन फॉरगेट शीला की जवानी वाला सॉन्ग, कैटरीना कैफ एट हर पीक, है ना, शी वॉज लाइक रियली रैविशिंग, अमेजिंग इन दैट सॉन्ग। द सॉन्ग वॉज सॉन्ग ब्यूटिफुली बाई सुनिधि चौहान। सो 30 मार खान जो है मैं ट्रोल वैल्यू के बेसिस पे नहीं देखती, मैं एंटरटेनमेंट के लिए ही देखती हूँ। लेकिन आपको किस तरीके से उसको देखना है ये आप देखें, मुझे बताएं, लेट मी नो ऑन हमारे बिग के इंस्टा पेज पे विच इज़ 106.2 बिग, एंड मेरे इंस्टा पे भी आप बता सकते हैं hustle_shirin। ऑन दैट नोट लेट्स गो एंड लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग।

0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: Big 106.2.

The Big Millennial Weekender पे मैं हूँ शिरन on Big 106.2. तो आज मैं बात कर रही थी about the most trolled Bollywood movies. बहुत सारी आएंगी movies इसमें. अगर बात करने जाए ना, the list is very big. लेकिन आखिरी movie के बारे में मैं बताऊंगी because this is almost towards the end of our show. तो ये वाली movie भी जो है, this is like a mixed bag, you know. It's like कुछ लोग entertainment के लिए देखते हैं, कुछ लोग जो है troll के लिए देखते हैं. मैं mixed चीज़ों के लिए देखती हूँ. एंड दैट इज़ मैं प्रेम की दीवानी हूँ. आज भी लोग समझ नहीं पाते कि कसम की कसम जो गाना है, इतना खूबसूरत गाना. व्हेन यू डोंट लुक एट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्क्रीन, बट व्हेन यू लुक एट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्क्रीन, यू रियली कांट अंडरस्टैंड कि करीना कपूर वहाँ रो रो के गा गा के अपने सबको बता रही है कि भाई क्या मुझसे नहीं होगा और प्यार, मैं नहीं कर सकती एक और आदमी को अपने ज़िंदगी में कबूल. लेकिन फिर भी उसको जो है ज़बरदस्ती जूस पिलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती दूध पिलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती उससे शादी करवाई जा रही है. किसी को उसका दर्द दिख ही नहीं रहा. सिर्फ ये गाना ही नहीं, पूरी मूवी जो है ट्रोलेबल है, बट स्टिल एंटरटेनिंग भी है. तो ऑल ऑफ यू मस्ट डेफिनेटली वॉच मैं प्रेम की दीवानी हूँ फॉर इट्स ट्रोल एंड पार्टली एंटरटेनमेंट वैल्यू. एंड लेट मी नो वॉट यू थिंक अबाउट ऑल द सजेशंस दैट आई हैव गिवन यू ऑन हमारा जो बिग का इंस्टा पेज है, विच इज़ 106.2 बिग. और मेरे इंस्टा पे भी आप मुझे बता सकते हैं DM करके, hustler_shirin. सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ अंटिल नेक्स्ट सैटरडे. आपको फिर मिलूंगी बहुत सारी खबरों और बहुत सारे गानों के साथ. अंटिल देन, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग.

0: बिग 106.2 की तरफ से आपको इंडियन इंडिपेंडेंस डे की बधाई. आजादी का जश्न हमारे साथ मनाएं. सुनते रहे बिग 106.2, जहां भारत दिलों में बसता है. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Yeah, let's go. The Big Weekender. The biggest Bollywood hits non-stop.
1: Non-stop hits.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.

106.2 The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं बिग 106.2 The Beat of Bollywood.

Craps, MSN chats, and Bollywood bangers. It's your audio time machine. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. बिग 106.2 की तरफ से आपको इंडियन इंडिपेंडेंस डे की बधाई. आजादी का जश्न हमारे साथ मनाएं. सुनते रहे बिग 106.2, जहां भारत दिलों में बसता है. रीवाइंड योर हार्ट, रीवाइंड योर वीकेंड. Let the 2000s take over. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

0: बिग 106.2 की तरफ से आपको इंडियन इंडिपेंडेंस डे की बधाई. आजादी का जश्न हमारे साथ मनाएं. सुनते रहे बिग 106.2, जहां भारत दिलों में बसता है.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Big.
2: Yeah, check it out.
0: Big 106.2.

0: नंबर 36 एक और रिक्रिएटेड गाना फ्रॉम पति पत्नी और वो दो ओरिजिनल गाना आमिर खान माधुरी दीक्षित पे पिक्चराइज्ड एंड पीपल आर प्रेजिंग वामिका गब्बी इन पति पत्नी और वो दो शी वाज फैंटास्टिक इन द मूवी
1: दिल में है तूफान भरा
0: Right here on Big 106.2, you have Big Bollywood Countdown and Mansi.
2: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने
5: 2 या 4
4: कब तक वापस लौटेगा
5: यूं ही यहीं 4-5 दिन में
4: 4 या 5
6: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन ओटीटी पे क्या देखें क्यों देखें देखे भी या करें स्किप मैं सब बताऊंगा द बिग बिंज विद सिड प्ले दबाओ कंफ्यूजन हटाओ
2: द बिग बिंज विद सिड सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 37.

If you enjoy a thorough Bollywood masala entertainer, I am sure you've loved the movie. Agar aapne nahi dekhi hai, it was so funny. Akshay Kumar, Raveena Tandon, brilliant star cast. In fact, nostalgia for us millennials, kyunki decades baad inhe humne screen mein dekha tha. With Welcome to the Jungle. इस हफ्ते नंबर 35 पर अहमद खान की मूवी, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनसेंबल कास्ट, ऑलमोस्ट 34 स्टार्स टुगेदर एंड ग्रेट रिव्यूज जो हैं इस मूवी के आए थे. फिलहाल OTT रिलीज अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, बट आई थिंक इट्स अ फन वॉच. आई एम एक्साइटेड फॉर हैवान नाउ, अक्षय कुमार की आने वाली मूवी. सितंबर में रिलीज होगी, प्रियदर्शन की मूवी है एंड अक्षय कुमार को हम इतने टाइम से कॉमेडी करते हुए देख रहे हैं, सो वील सी हिम इन अ नेगेटिव रोल आफ्टर एजेस. So kind of very, very thrilled for Hewan. Saif Ali Khan and Akshay Kumar reuniting after Tashan. I think 2026 is a year of nostalgia for millennials. And one such nostalgia hame is week mila with Awara Pan 2 ki release. Imran Hashmi as Shivam phir se aa chuke hain hamari zindagi mein. Great reviews coming in and I had to revise a bit before watching Awarapan 2 kyunki main bhool gayi thi Awarapan mein kya hua tha in the first installment, and maine first part dekha and finally maine second part dekha hai. Spoilers I won't give you, but over the weekend if you want to relive that Imran Hashmi era, go and watch Awarapan 2.

number 31 from Main Wapas Aaunga. I honestly wanted to watch this movie in the theater, but mauka hi nahi mila. And maine ye movie last week OTT pe dekhi. And I cried buckets. I literally cried buckets. Yeah, big Bollywood countdown, Mansi. And what a brilliant movie. Imtiaz Ali ki movies ki khasiyat ye hoti hai ki movie finish hone ke baad bhi, when you finish the movie, you still feel all the feelings. And Naseer Sahab, he is brilliant in the movie. Like, he is a fantastic actor. I was pleasantly surprised. Vedang Rana, what a transition. He plays the younger version of Naseer Sahab, the character called Kinu, and he's done a fantastic job. Maine honestly ye movie romantic angle ke liye lagai thi, but the movie took me somewhere else. I started thinking about my grandparents. It's a beautiful, beautiful story. So please do watch. The movie is on Netflix. But I'll moving on. Number 30 par is hafte we've got Varun Dhawan. With this title track from Hai Jawani To Ishq Hona Hai. Brilliant comedy, I think. Agar main आज के जमाने का कोई गोविंदा सोचू कौन होगा या सलमान कौन होगा डेविड धवन की मूवीज में जो हम देखा करते थे इन अर्ली 2000s एंड 90s, आई थिंक वरुण धवन इज दैट परफेक्ट फिट. हिज टाइमिंग ऑन स्क्रीन इज माइंड ब्लोइंग. मूविंग ऑन टू नंबर 29. साकिब सलीम हुमा कुरैशी का ही प्रोडक्शन है. दोनों भाई बहन ने ये मूवी प्रोड्यूस की है. हुमा कुरैशी प्लेज द मेन लीड फ्रॉम बेबी डू डाई डू इस हफ्ते ऑन नंबर 29. नंबर 30.

Number 29. कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: This is the Big Bollywood Countdown.
1: All the music I love.
0: The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड. Number 28.

0: The 40 biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
1: Playing in the top 40 biggest hits of the week. You have Big Bollywood Countdown. Keeping you company, I'm Mansi. And now moving on to Gana number 26 from Musafir Cafe, a show that's trending on socials. In fact, Netflix has officially renewed Musafir Cafe for season 2. Following a massive success of the first season, Netflix ने अनाउंस करा है कि सीजन 2 बहुत जल्दी आने वाला है. एंड इनिशियल जो है शो रिलीज हुआ था 24th को, तो कहा जा रहा है कि वेरी वेरी सून विल नॉट हैव टू वेट फॉर सीजन 2. विक्रांत मासी, वेदिका पिंटो एंड महिमा मकवाना. सीजन 2 विल कंटिन्यू टू डाइव इनटू द कॉम्प्लिकेटेड रियलिस्टिक रोमांस बिटवीन चंदर, सुधा एंड प्रीति. एंड इट विल ऑल्सो एक्सप्लोर द आफ्टरमैथ ऑफ द फर्स्ट सीजन्स फिनाले, focusing on unresolved feelings, life choices, and whether second chances can rewrite bad timing in life. Show remains an adaptation of the characters from Divya Prakash Dubey ki very very popular Hindi novel Musafir Cafe. So can't wait for season 2. Is hafte Musafir Cafe se. बहुत ही खूबसूरत गाना रेखा भरद्वाज की आवाज में. इनफैक्ट एल्बम ही बहुत खूबसूरत है. एज ब्यूटिफुल द शो वॉज एंड आई कांट वेट फॉर सीजन 2 दिस वीक. स्टार्टिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन 26. मूविंग ऑन नंबर 25 पर वी गॉट पति पत्नी और वो दो से.
2: जिन्नी सोनी लग दी है मनु किसे हो ना लगे लगे.
1: Aditya Rikhari ki awaaz right here on Big 106.2, playing in the top 40 biggest hits of the week. You have Big Bollywood Countdown. Mahu Mansi.
0: Number 26.

On number 24, Dhurandhar 2 se Shashwat Sachdev. Brilliant music. I think the way he's recreated purane gaane, original songs jo banaye hain for the franchisee, it is fantastic. Playing in the top 40 biggest hits of the week, main hoon Mansi. Yeh hai Big Bollywood Countdown and talking about music. True to the legacy of the original movie, I'm talking about Awarapan. Part 2 also has a lot of brilliant soundtracks. The sequel features music which is composed by Mithun, Amal Malik and Jeet Ganguly. And of course, brings back some iconic memories from the OG Awarapan. अब मूवी जो है वो प्रोड्यूस की गई थी ऑन अ वेरी टाइट बजट अराउंड 25 टू 30 करोर्स एंड ओपनिंग डे पे ही 20 करोर इस मूवी ने कमा लिए हैं एंड फिलहाल तो वीकेंड है तो आई थिंक दिस मूवी इज ऑलरेडी अ हिट इफ यू प्लानिंग टू वॉच आवारापन 2 गो हैड वॉच इट आई एम टॉकिंग टू मिलेनियल्स यू विल लव इट इट्स प्योर नॉस्टैल्जिया

नंबर 17 फ्रॉम कॉकटेल 2 जो अब नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं, ब्यूटिफुली रिक्रिएटेड। इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट इज गाना रिलीज करने से पहले आर्टिस्ट ने शाहिद कृति एंड रश्मिका ने खुद ही कहा कि ट्रोलर्स हम खुद को ट्रोल कर रहे हैं बिकॉज वी रिक्रिएटिंग एन आइकॉनिक नंबर। I think brilliant marketing and brilliant PR. Playing you the top 40 biggest hits of the week. Yeah, big Bollywood countdown. Mansi and moving on to two songs which are chipak ke reh gaye. I think इस पूरे साल ये हमारे countdown का हिस्सा होंगे. I'm talking about A.R. Rahman, Irshad Kamil. This one from Tere Ishq Mein. रिव्यूज आए थे इस मूवी के, बट मुझे बड़ी अच्छी लगी बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ लव स्टोरीज जहाँ पे हैप्पी एंडिंग्स नहीं होती हैं, सो आई काइंड ऑफ एंजॉयड। एंड कृति सैनन, शी इज फैंटास्टिक। यू सी हर इन कॉकटेल एंड देन यू सी हर इन अ मूवी लाइक तेरे इश्क में, शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। इस हफ्ते तेरे इश्क में ऑन नंबर 16। मूविंग ऑन टू नंबर 15,

0: 40 biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
1: Happy weekend, playing you the top 40 biggest hits of the week. Here at Big Bollywood Countdown, keeping you company, I'm Mansi. Now, moving on to gana number 12, again, Imtiaz Ali ki main wapas aunga se. It's more than a love story. It's a story about partition, about how people lost a lot of things. I'm not talking about materialistic things. They lost on friendships. They lost on their youth. And the kind of emotions attached to a place. वो आपको दिखेगा मैं वापस आऊंगा में. पार्टिशन पे एक और मूवी है जो रिलीज हुई है, बंटवारा. एंड सनी देओल उस मूवी में है, साथ में प्रीटी जिंटा. ग्रेट रिव्यूज कमिंग इन. आमिर खान का प्रोडक्शन है, तो ऑफकोर्स कमाल कहानी होगी. आई हैवंट सीन द मूवी येट, बट आफ्टर वॉचिंग मैं वापस आऊंगा, आई रियली वॉन्ट टू वॉच एंड लर्न मोर अबाउट द स्टोरीज दैट हैपेंड इन 1947. फिलहाल इस हफ्ते नंबर 12 पर दिल

नंबर 11 पे क्या कमाल वीडियो है एंड क्या कमाल गाना है जीशान अली की आवाज में. अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सिंगल. ऑफकोर्स गाना कुछ महीनों पहले रिलीज हुआ था बट स्टिल ट्रेंडिंग थैंक्स टू इंस्टाग्राम रील्स.

इस हफ्ते इश्का वे नंबर 11 पे. लेट्स सी नंबर 1 पे इस हफ्ते कौन सा गाना आएगा. इफ यू हैव एनी गेसेस यू कैन हेड टू आवर इंस्टाग्राम पेज 106.2 बिग एफएम एंड सेंड मी अ डीएम. नंबर 12.

playing you the top 40 biggest hits of the week. On number 7, from Welcome to the Jungle, that was Ucha Lamba Kad. Right here, I'm El Mansi, keeping you company over the weekends as well. Now, moving on to gana number 6 again from Awarapan 2. Massive opening mili hai. जैसे मैंने आपको बताया, मूवी बहुत ही छोटे और टाइट बजट पे बनी है, 20 से 25 करोड़ की. पहले ही दिन जो है सारी वसूली हो चुकी है, थैंक्स टू इमरान हाशमी एंड थैंक्स टू द लव दैट वी हैव फॉर हिम एज मिलेनियल्स. मैंने कहा ना, व्हाट सैयारा वॉइस फॉर जेंजीज, आवारापन टू हम मिलेनियल्स के लिए है. लॉट ऑफ पीपल आई नो पर्सनली फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गए हैं. मैंने फर्स्ट डे लास्ट शो देखा है. सच नॉस्टैल्जिया, सो वर्थ इट. एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड कि इन्होंने ओरिजिनल मूवी से कई गाने को रिक्रिएट भी किया है. बट लेट मी टेल यू, व्हेन आई टॉक अबाउट द ओजी आवारापन, जब ये मूवी रिलीज हुई थी, इट वॉज अ बिग फ्लॉप. इट वॉज अ मैसिव डिसअपॉइंटमेंट व्हेन आई टॉक अबाउट बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस. बट ओवर टाइम द मूवी बिकेम अ कल्ट एंड दैट इज व्हाई सच मैसिव फैन फॉलोइंग फॉर द कैरेक्टर शिवम एंड फॉर आवारापन.

0: ऑफ कोर्स हमारा रिश्ता एज मिलेनियल्स बड़ा पुराना है इमरान हाशमी से. इस हफ्ते ऑन नंबर 6 इसी के साथ नंबर 5 पे थैंक्स टू सोशल मीडिया इस गाने की पॉपुलैरिटी के पीछे.
1: मेरे प्यारे दिल च तू मेरी हसरत तू असी तेरे उत्ते मर देने सुन देने क्यों हुण तेरो.
0: सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल स्पेशली इंस्टाग्राम. मिलियंस ऑफ रील्स इस गाने पे बनी है. इट्स कॉल्ड झोल दिस वीक ऑन नंबर 5. इसी के साथ कांट वेट फॉर द सीजन 2 मुसाफिर की मैं बात कर रही हूँ मुसाफिर कैफे की उसी से इस हफ्ते.

0: is the Big Bollywood Countdown.
1: All the music I love.
0: The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2 wishes you a happy Indian Independence Day. Celebrate the spirit of freedom and unity with us all day long. Keep listening to Big 106.2, where India comes alive.
2: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन. Big 106.2.

0: मैंने ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: टू द बिग बिंज, वो शो जो आपका वीकेंड सॉर्ट करता है व्हेन इट कम्स टू कंटेंट ऑन ओटीटीज। वी टोटली फोकस ऑन ओटीटीज, क्या नया रिलीज हुआ है जिसके बारे में लोग कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट, इट्स गोइंग टोटली वायरल, द कॉन्टेंट कुड बी अ शो, इट कुड बी अ मूवी, बेसिकली यू नो व्हाट द फंडा इज, टू सेव योर टाइम ओवर द हार्ड अर्नड वीकेंड, ताकि आप स्क्रोल करने में, रिव्यूज पढ़ने में, देखने में टाइम वेस्ट ना करें, इसीलिए ये काम मैं कर लेता हूँ आज के लिए। एंड टुडे वी गोना बी टॉकिंग अबाउट द शो दैट रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स आफ्टर सम 20 ईयर्स, सिद्धार्थ हैज डन, मैं नहीं, दूसरे वाले सिद्धार्थ रंगदे बसंती के बाद ही इज डन अ हिंदी पीस ऑफ कंटेंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वी टॉक अबाउट ऑपरेशन सफेद सागर, हियर्स व्हाट द ट्रेलर साउंड्स लाइक।
1: दोनों तरफ पहाड़ है, हल्का सा स्लिप और सीधा क्रैश।
0: I mean, if you like me, love an Air Force show, if you liked Top Gun, is this show going to match up to that level? That's what we're going to talk about. They say, dekhe, nahi dekhe, what are the good aspects, the bad aspects? And finally, the verdict, should you stream it or skip it? Netflix ka Operation Safed Sagar on the Big Binge. This is Big 106.2 and we are the beat of Bollywood.

0: You're listening to The Big Binge with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: Stop searching. Start watching. Sid's got your weekend entertainment sorted on The Big Binge. Big 106.2, The Beat of Bollywood.

This is The Big Binge with me, Sid, right here on Big 106.2, The Beat of Bollywood. And आज हम लोग बात कर रहे हैं about Operation Safed Sagar, Netflix का नया 6-episode series. And बहुत ही बड़े canvas के साथ ये आता है. In fact, that's what draws you towards the show, right? इसमें सिद्धार्थ हैं, जिम, again, please, मैं नहीं हूँ, sorry, no autographs, please. It is the other सिद्धार्थ, who's doing a Hindi piece of content after 20 long years after Rang De Basanti. Rang De Basanti वाले सिद्धार्थ इसके अंदर हैं, जिम्मी शेरगिल and Abhay Verma. And it takes us into the world of the Air Force and during the Kargil conflict of 1999, specifically the Golden Arrows naam ka ek squadron tha. Now, here's what's catching everybody's attention, right? Even before the release, it was the scale of the show. Kya? Netflix ne isko describe kiya hai as one of its most ambitious Indian productions. Extensive aerial sequences hain, military hardware pe focus hai, mountain locations and a production spend running into hundreds and hundreds of crores. But thankfully, शुगर बना रहे हम लोग, दैट द शो इटसेल्फ इजंट रियली इंटरेस्टेड इन टर्निंग एवरी सिंगल सीन इनटू अ चेस्ट थंपिंग स्पीच. व्हेन इट कम्स टू दीस काइंड्स ऑफ शोज, इट्स वेरी इजी टू काइंड ऑफ फॉल इनटू दैट ट्रैप, राइट? बट दिस शो डजंट फॉल इनटू दैट ट्रैप. इट इज मच मोर अबाउट पायलट्स, प्रेशर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, फियर, प्रेपरेशन एंड टेरिफाइंग रियलिटी ऑफ फ्लाइंग मिशंस एट एक्सट्रीम एल्टीट्यूड्स. सो यस, ये एक वॉर ड्रामा है, बट रियली really dekha jaye to it's more like a workplace drama jahan par the workplace happens to be several thousand feet above the ground. Matlab kaam pe jaane mein bhi hum log roz boss ka aur jaan ka jokham uthate hi hain. So more coming up on the show, Operation Safed Sagar, Netflix ka ye show. What are the good aspects about the show? Coming right up on The Big Binge with me, Sid.

0: searching. Start watching. Sid's got your weekend entertainment sorted on The Big Binge. Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2 wishes all its listeners a very happy Indian Independence Day.
1: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.
0: Stop searching. Start watching. Sid's got your weekend entertainment sorted on The Big Binge. Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

It's time for the verdict right here on The Big Binge with me. It said Netflix Operation Safed Sagar, dekhe ki nahi dekhe? What is my verdict? And disclaimer, this is only my verdict after having seen the show. Should you stream Operation Safed Sagar? I'd say yes, stream it. But surprisingly not, because it's a war story. Aap isko isliye dekhe, because it's a very effective drama about people in a workplace doing a frighteningly difficult job. Matlab bahut hi zyada mushkil सिचुएशंस में, एक्सट्रीम प्रेशर के अंडर कोई काम करता है तो कैसा होता है. सो इट्स अ वर्कप्लेस ड्रामा दैट इज सेट इन द एयरफोर्स. 6 एपिसोड्स का ये फॉर्मेट है. इट हेल्प्स कि वो 6 एपिसोड हैं, 8 नहीं, क्योंकि 8 होते तो भाई डेफिनेटली टू मच हो जाता. परफॉर्मेंसेज कंट्रोल्ड हैं. एरियल सीक्वेंसेज लुक एक्सपेंसिव विदाउट लुकिंग फेक. मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि आप एक AI मेड वीडियो देख रहे हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द शो लार्जली ट्रस्ट करता है सिचुएशंस टू क्रिएट इमोशन इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली टेलिंग अस के देखो हेलो एक्सक्यूज मी आपको ऐसा फील करना चाहिए. नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्या ये एक परफेक्ट शो है? बिल्कुल भी नहीं. लेकिन कुछ कैरेक्टर्स कुड हैव बीन डीपर. देयर इज अ लिटिल रेपिटेशन इन द मिडल. ओकेजनली इट काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स टू मच. लेकिन कंपेयर्ड टू मेनी ऑफ द अदर लार्ज स्केल इंडियन मिलिट्री ड्रामास, दिस ऑपरेशन सफेद सागर इज रिफ्रेशिंगली डिसिप्लिन्ड. तो मेरा रेटिंग होगा 3.5 आउट ऑफ 5. ऑपरेशन सागर ऑन नेटफ्लिक्स, जाइए, गो वॉच इट, स्ट्रीम इट, प्रेफरेबली ऑन द बिगेस्ट स्क्रीन दैट यू हैव, क्योंकि जितना बड़ा स्क्रीन हो उतना ज्यादा इस शो को देखने में मजा आएगा. सो दैट्स माई वर्डिक्ट. वॉट डू यू थिंक? यू कैन ऑलवेज लीव योर बुकेज एंड ब्रिकबैट्स ऑन आर इंस्टा. लीव मी अ मैसेज 106.2 बिग FM, दैट इज आर इंस्टा हैंडल. दिस इज द बिग बिंज विद मी सिड.

0: The beat of Bollywood. Big 106.2 की तरफ से आपको इंडियन इंडिपेंडेंस डे की बधाई. आजादी का जश्न हमारे साथ मनाएं. सुनते रहे बिग 106.2, जहां भारत दिलों में बसता है. नमस्ते.
1: ओला.
0: अस्सलाम वालेकुम.
2: बोंजूर.
3: नी हाओ.
2: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: Big. Big 106.2. The

Big 106.2, The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, The Beat of Bollywood.